लोग कहते हैं कि मेरी बहुत लंबी उम्र है, एक नहीं बल्कि नौ नौ. जी हाँ, मैं नौ लोगों को जिंदगी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने अंग दान करने की शपथ ली है. सिर्फ मेरी आंखें नहीं बल्कि माय हार्ट, माय लंग्स, लिवर, किडनीज, पैंक्रियास, बोन्स, कार्टिलेजेस एंड ऑल टिश्यूज. आप भी नौ लोगों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं. एक नन्हे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक कोई भी अंग दान कर सकता है. मुझे अपने अंग दान करने पर बहुत गर्व है और मुझे यकीन है आपको भी होगा.